तू जी हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जी आका दा तारा। हर त्यावो हो संतो हो जी, सब दुख बसारन हारा, हर आपे ठाकुर।

अनेक तेरे अनेक पढ़ बहुत सिमरत सात जी कर क्रिया खटक्रम करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ वर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करै सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जान होई असमहला चौथा तू करता सचियार मेडा साई जो तो भावै सोई तीसी जो तू देह सोई हो पाई रहा सब तेरी तू सबनी त्याया जिसना कृपा करत नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप छोड़या आ मलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल वजोग मिल विछड़या संजोगी मेल जिसनो तू जनाए हे सोई जन जाने हर गुण सदी आख बखाने जन हर सेव यतन सुख पाया सहजे हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर विख है जान है सोए जन नानक गुरु मुख प्रगट होए।

तह डूबी अले मन एक न चेतस मूढ़ मना हर बिस्तरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिंतू ना ही विसरिया समहला पंजवा पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे।

तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दोट सवै तुम काब हो आप दय मोय बचाव हो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर इच्छा निज कर दै करिय सब भैरन को।

ने आप सवारी सब कण को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहबत कियो कटकट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दिठ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के

आदानी लनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा तक कृपान अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव क कह सदा शिव निरंकार का चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखन जाय पसारा केहे बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक प्यो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूर राजा हवै बैठा कहूं सिमट प्यो शंकर अकैठा सिगरी सेठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संकरो दोट जिते उठ बतुत पाता सकल मलेश करो रण खाता।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किल विख सकल देह को हरता, दुर दोखिन को शक करता, श्री तुजा पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला, मन वांछत पल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई अड़ल, सुने गुंग जो याहे सरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाव नित ना ते नरके रह, हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई, संबत सत्रह सहस पुणज अर्ध सहस पुण तीन कहज, भाद्रव सुधीअष्टमी रवारा, तीरस्त द्रव ग्रंथ सुधारा, इत श्री चरित्रो पख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अपजू, दोहरा दाह जान कर दास पर कीजे कृपा अपार, आप हाथ दै राख मोहे मन कर्म वचन विचार चौपई, मैं नग्ने सह प्रथम मनाऊ किसन बिसन कब हूं ना त्याऊ, कान सुने पहचान तिन सो लिव लागी मोरी पग इनसो, महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं किंकर थारो, पना जान करो रखवार बाहि गहे की लाज बिचार, पना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय, देखते जग मैं दो चले राख आम और ना दलै, तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम सह मैं दा तिहारा, जान अपना मुझे नवाज आप करो हमारे सुभकाज, तुम हो

तुम साहेब मैं किंकर थारा दाह जान दे हाथ उभारो हमरे सो बहरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बाहर करो कविता विद नाना कृष्ण जथामा चरित्र उचारो चूको कब ले सुधारो कबे ओ बाच दोहरा जो निज ब्रह्म सो कहा जग माहे जो तो प्रभ जो ते प्रभ को त्याहे हंत सुर।

जाबा इस प्रभ को पे हो जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कह सुनाए। काबाज दोहरा ठांड पे ओ मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो साए। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्या है संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत। दोहरा काल पुरख की देह मो कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस क्रोर जलेश। दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाक दनेत। स्वर्गवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। चौपाई जो ये कथा सुना और गावे दुख पावते निकट नावे। विष्णु भगत की ये फल होई आद ब्या चब सके न कोई। सम्मत 1755 हाड़ बदी प्रथम सुख दावन। तव प्रसाद कृ ग्रंथ सुधारा फूल परी लव लेव सुधारा। दोहरा नेत्र तुमके चरण तरस द्रव तीर तरंग। श्री भगवत पूर्ण कियो रघु कथा प्रसंग। साध असाध जानो नहीं बात सुवाद बवाद। करण सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

सिमरत सातर वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो श्री इस पान कृपा तुमरी कर मैं ना केहो सब तोहे।

बच्चे चले गए। गुरु अर्जन देव जी की बरात आई हुई है। गाओ गाओ रही दुल्हनी मंगल चारा, सारे खुशी के गीत गाइए। अज रब ब्याहन वास्ते आया है माता गंगा जी। सारे एकाग्र चित हो के रस माने हो ते मैं अपने कीर्तन अंदर थानू सरवण करावांगा गुरु अर्जन देव जी दे बरातियां दी साखी। क्योंकि दसरियां दा वो नगर है बिलगा ते नाल ही मौ साहब है जिथे महाराज जी की बरात रुकी सी। बहुतिया ने तुसी दर्शन किए ते मौ साहब माता गंगा का घर है। कुछ गल्लां ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां इतिहास के पन्नियां ते भी नहीं लिखियां होंदियां। उन्हूं असीं कहिंदे सीना वसीना। उन्हां लोकां नूं पता हुंदा है जिन्हां नाल बीतियां होंदियां ने। साढ़े पिंड नगर दे साढ़े बड़ वडेरे बजुर्ग जिन्हां ने गुरु अर्जन देव जी की बरात की सेवा की सी ते संगत दी ते कल दे कीर्तन विच मैं तुहानूं पूरी साखी सुणावांगा महाराज जी का किवें विआह उत्थे होया। अज बराती जिहड़े पापा वाले सन बहुत सारे बराती सन जिन्हां विच बाबा बुढ़ा जी भाई गुरदास जी भाई सालो जी बाबा मल जी साई मियाँ मीर जी बाबा संघ जी होर भी ऐसियां रूहां गुरु जी की बरात विच उस धरती ते आईआं। भावना बनाइए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी आप गुरु अर्जन होके बैठे ने ते रस लईए कीर्तन का निरंकार बयान वास्ते आए।

0: मैनू गठिया हो गया है, मेरा शरीर जुड़ गया है, मैं खलो नहीं सकता। मान लो उठ के खलो, पातशाह मेरे को कितने उठाया जाता है। संगत जी करो गुरु जी के दर्शन। गुरु अर्जन देव पातशाह दे दोनों मोढ़िया नू फड़ के उनू तानू उठाल देने। संगत जी वो तो इदा उठ के खड़ो गया जिवें उनू बीमारी कदी लगे ही ना होवे।
1: वाहिगुरू
0: तो नवा नरोवा, वो तो कदी इधर शरीर नू टोवे कदी उधर नू टोवे। महाराज मैं ठीक हो गया, मैं तंदुरुस्त हो गया। ते गुरु अर्जन देव जी की कहते, कहते मल तू तो ठीक हो ही गया, वो जेड़ा तेरे घर आके भी मथा टेक जाएगा ये दुख तो ओदा भी दूर हो
1: जाएगा।
0: अज तुसी ओनू कहते हो मालड़ी साहब। नकोदर जाइए, बहुते तुसी दर्शन किए होने, जिन्हू कितों भी आराम ना ना आवे ते साडे इलाके दे लोग इन्ना विश्वास रखते ने, कहिंदे कोई नहीं, जे डाक्टर ने जवाब दे दिता तू मालड़ी साहब जाए। हद तो रोग लग जाता है ना, जे कितें भी ठीक नहीं हुंदा संगत जी वो फिर मालड़ी साहब जाते, जिन्हें तुम वेख्या किड्डे रंग भाग लगे हुए ने उत्थे, उहदे घर अगे मत्था टेकण वालिआं दी वारी नहीं आउंदी। मल चल बरात दे नाल चल, वो कहिंदा महाराज मेरा कोई हाल है नाल जाने वाला ना, मेरे को कपड़ा लीना, तू मेरे लिए जोड़ा बनाया है ना, ते मैं भी तेरे लिए कुछ बनाया है। झट देनी रथ वल नूं जांदे ने ते गुरु जी सोहना चोला पवा के ना संगत जी उन्हूं नाल बिठा लैंदे ने, ते रथ दे उत्ते बिठाया है, ते ये रथ गुरु जी की बरात बिलगे वल नूं टुर पई है।

लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीतो ना होना तू न छुटै निकल जाइयो दूतो। श्लोक महला पंजवा। मन मह चितवो चितवनी उद्यम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहार हर देहु नानक के मीत। सोहे लारा गौड़ी दीप की महला पहला।

रे भारी भुजान के भूप पली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पए तो कहां पए भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश।

कर्ता पुरख निरपान निर्वैर्य काल मूरत अजुनी सै भंगुर प्रसाद जप

विस्माद रूप विस्मा रंग विस्मा नंग फिर जंत विस्माद पान विस्माद अग्नि खेडा बिडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग

कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होय खार कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार किसना

सच तां पर जानिए जा सख सचिले दया जाने जी की कुछ पुन दान करे सच तां पर जानिए जाए आत्म तीर्थ करे निवास।

कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साथ रहे सबको सत समावर कर भरपूर राम नाम देवा में सो नाय लाया प्राचित जाए नानक तो मुकंतर पै जज में जोर छली चंद्रा उलकान।

जे मोह का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे बस निहानी है पितरी चोर करे वडिये हाथ दलाल के मुसफिये करे।

सरस अहिरी लै पहर जा संगलाई पांच वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिम मंगलन सुहाए सरस बाणे वाहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा।